0: वालों को कुछ भी नहीं भेजा है। ओके यार पेटिए राइट एंड कोने में तो कोडे पालो कुच बाय वीडी मुइजा अभी बेर के कारे मैंने निगुए एरने ओ कारो बोरी गिन के किडी फेस लवुड रेडियो मनो के तबे नोटिया कारो कारा चल के रेडी चेंग मैंने नो अटीन लवुड रेडियो वेको गुआ को ना मोरा चेक में चाटू विलकान उडुगु उमेदे कारा चल के दे पेंजो वेर यरापा एफएम रेडियो
1: The afternoon blaster. Come ke come. Kama wakili ye lunch hour request. Weather focus. Aloha loha paping. Yenyu teach. Yenyu la remi. Mike check. Kimu kene mapolata. Chawa biro ni ucha wa bungan mediching. Kipiara boru ya boru. Tone adek. Rapa fama.
2: I'm down on the do too. We are gang kind. A meal channel make it with Chow Wang at the door.
3: You want to tell me?
4: Men Olara Beauty Salon, uti opero duch enorme witch, pn wami ponye e cosmetology, ketu witch, kit mo keken, kemen olaraba, jemi weng tuere, wateki wif duch ket me miro dore wil me yot, amoni, osen crescent, laxi, kumara, afro kinky, super trisk, necklace ki earring tok, wero mon ring dang dang, tem watin wero nera dukine, men olara beauty salon, tipa de town council, e yokalon, wapime, kit dabsko, drug soap, ibolo we chot, tungping, kamo chara ye kavera, kikole ye, pengej mukene, Go chim a not a beer beer bungwen a bor a derangwen a rio a beer a bichel kai not a beer a bor a rio a bichel a bichel a bungwen a bichel min olara beauty saloon gang deo pamon
5: Icon Pade, in the Pira Boro, Duma Boro, 2026, Free Legacy Studio, Tika Kendo Gojo, Mandira Kira.